एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराक्षस का काटा सीसा, श्री अस्केत जगत के ईसा, पोपन वृष्ठ गगनते पई, सब हैं आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा, दुष्टन दाहा गरीब निवाजा, अकल पवन के सिरजन हारे, दास जान मोहले हो उबारे। कब्यो बाछ बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै कर तारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तौर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दय मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोह राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रण को पलमो भद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तर्त तब दे अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी भूज उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको फेम न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पेन पेन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पहयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा होए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगात स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य बार असिख्य संघरो।
दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता। जे अस्तो तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यं है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए तह सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते तहें उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्व ठौर मोहो हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप

सुबह जी था परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरकपार सर्वस्वरचयम पहुड़ करण पंजनहार कालहीन कलाश नुदकार पुरक देश धर्म धाम सो परमडत भूता लख भेस अंग रंग नरंग जाके जात पात नाम गर्भगन जंदुष्ट भजन मुक्त दैकाम आप रूपमीक अनुस्त पुरक अवधूत गर्भगन जन सर भंजन आदि रूपाचूत अंगहीन भंगनात्मिक पुरख पारु सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पारु सर्वगंता सर्वहंता सर्व दयान भेख सर्व शासन जान ही जय रूप रंग अरलेख परम वेद प्राण जाकह नित भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवे मोचित मद भर छंद तप प्रसाद गुण गण उदार महम परासन भंग भवनांगन भव प्रकाश निस्तन नास आदिन बाहु साहु साहु राजन राज भा नर भान देव अण देव महान इंद्रा निंद्र बालन बाल हरं करण कालन काल अनुभूत अंग अब भंग आत्मित पार गुण गण उदार मंगल प्रणाम निर्भय निकम आत्म प्रचान मित गत खंड आलिशा कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडन बाढ़ चाचरी छंदता प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारे पारे हरियं करियं नामे अकामे भुजंग प्रयत छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र प्रति चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रह न मित्रह न परमंग न पितरह न कर्मंग न काय अजन्म गजाय न चित्रह न मित्रह परय पवित्र प्रतिस अधिस अदृश्य कृष्य भगवती छंद त प्रसाद कस्ते के आछज दिशा के अपज पिशा के अगंज कर्म के अपंज परम के अपज लोक के अदित सो के अवधूत वर्णय के भूत करणय के राज प्रभय के त्रभंग तुझय सुख वर्णय सर्वा प्रणय के जगत कृतियाँ के छतरंग छतरियाँ के ब्रह्म स्वरूप के अल्पहनुप के आदि अधिवे के आप अपेवे के छतरंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजा कर रही मारे हक पाक ब्याह के गैबल गैबे के अफल गुना है के साहन साहे के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गाने के सर्वत्र पौनाए के सर्वत्र दिशाए के सर्वत्र पेशाए के सर्वत्र राजाए के सर्वत्र साजाए के सर्वत्र दीनाए के सर्वत्र लीनाए के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र दिशाए के सर्वत्र पेशाए के सर्वत्र काल के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सुखाय के सर्वत्र पोखाय के सर्वत्र त्राणाय के सर्वत्र प्राणाय के सर्वत्र दिशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्याय सदैव प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र भान्याय के सर्वत्र मान्याय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंग कलीमय के परमंग अफीमय के आकल अलामय के साहब कलामय के हुसनल वजू है तमा मुरडजू है हमेश्वर सलामय सलीखत मदामय गनी मुरस कस्ताय गरीबल प्रस्ताय बिलंदल मकानय जमीन जमानय तमजल तमामय रुजल नदानय हरिफल रजीमय रजाक चकीनय अनेक उतरंग है भेदय भंगय जीजल नवाजय गनी मुलकराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी रूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सदाम है सदैव काम निर्बाध स्वरूप है गाध हनुप है ओ अंग आदि रूप है ना स्वरूप है अनंगी अन्ना मित्र भंगी त्रिकामी त्रिभर्ग त्रिबादी अगंजे गादे शुभम सुभागे सुसरभा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है छिज है छूत है कि नरक पंडास है प्रचुर प्रवास है निरोकत प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरोकत सदा है विभुगत प्रभा है अनोकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है भेख है लिख है भरम है कर्म है नाद जुगा दया जय है वह है भूत्या धूत्या नास है।

सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता प्रचाबल छंद प्रसाद नमो नर्कनाशिस्तम प्रकाशयानंगं स्वरूपे अपंगं विभूति परमात्म परमाते सदा सर्वसाथी अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं श्री कै मित्तो अमीक सदैव प्रभ अजह अजह भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहू रह के हाजर हजूर है मेसर सलामे समस्त कलामे के साहिब दिमागे के हुसन चिरागे के कामल करीमे के राज करहीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है करीमल कमाले कुसन जमाले गनी मल कराज गरीबल नवाज है हरिफल सकन है हरास पकन है कलंकं प्रणास समस्त निवास है अगंजल गनी मैं रजाय कर ही मैं समस्तल जबाहे के साहब किरा है के नरकु प्रणासे बहस्तल निवास के सर्वल गवान है हमेशर रवान है तमा मल तजी मैं समस्तल अजीज है पारं परमीस है समस्तल अदीस है अदेशल अलेख है हमेशल अपेख है जमिनल जबाह है अमिकल माहे करिमल कुमाल है के जोरत माल है के अचल प्रकाश है के मित्तव सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्तव विभूत है के मित्तव उपसा है के आत्म प्रभ के अचल अनांग है के मित्तव भंग है मद पार छंद प्रसाद मौन मन प्रणाम गुण गिर मदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर खन बर नर अमंड पहुनास मौन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन भंग उपमा पार गात मित दारू जल थल अमंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस ब्यंत अन पहुनास त्रे तर त्रास आदन बाहु कसदाह ओंकार आदि कथनी नाथ

करणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व वर्ण है, त्रित के धर्म है, जाके कर्ण है, मन मान्य है, जग जन है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतीश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, पारती पर है, करुणा कर है, जपा जप है, थपा थप है, अकृता कृता मृता मृता मृता मृता मृता मृता करुणा कृत है, कृता कृता धरणी त्रित है, कमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृता मृता मृता अजबा कृता मृता मृता नर नायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, उपापंजन है, अरगंजन है, रिपदापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, आत्म वास है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंदे, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकार, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सात रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्योति ज्योति, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते, कलंकर बिना कलंकर रूपे, अलंकर अलंके, नमो आसासे, नमो बांक बंके, तपंगी त्रिपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाली अनंगी कामे, कचरी छंद अजय अलय अपय भय अपू अजू अनास अका

लिखी भुजंग प्रिया छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजलो नामे समस्तल निवासी निरकाम विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सो धर्म विभूते सदा सतदानंद स्त्रुंग प्रणासी करिमल प्रणंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गनीमे हरियं करियं करिमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं पहु सुभंग सर्वदा सर्वयुक्ते

को हरता हूँ, दुष्ट दुखियन को छ करता। श्री अस तो जो जा पाई दे अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ काला।

निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद असमला पहला वार श्लोक अनार श्लोक पिमाले पहले किले के टुंडिया सराजे की धनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु।

कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुखसार कुदरत पाताली अकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी।

0: जुग जुग फिर बैठाए ज्ञानी बुझे ताए सतगुर संतोखा धर्म ग्रथवा त्रेता रजते का जोर गिरथवा द्वापर तपे का सत्य ग्रथवा कलयुग रथगन का कूड़ गे तो माला पहला
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच

0: दूना जो अंत अपराधी दूना ने वह जो हंता मेरे गाय शीश ने मैं क्या थी है देख सुदे जाए महला पहला
1: पाठ पुस्तक संध्या बादं सिलपुर सबकल समादं मुख झूठ विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल बेचारं गल माला तिलकल लाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जान सुब्रह्मं करमं सा फोकट।

मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक कूड़, अखी सुतक वेखना परत्रया पर धन रूप, कनी सुतक कन

देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नहावा जेत पावा विण पाने के नहाई करी जेती सिर ठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए।

के अंत न पाए जाहि। एहो अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे कहो जाने सोए।

राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन के बड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिला तृप्ता सहाय, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रासो, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहिरे मन चित वह उद्दमा। जा आहर हर जीव प्रया, सहल पत्थर मह जंतो पाए। ताका रिजुक आगै कर तरिया, मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे कष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजुक संबा हिठा, कुर काहे मन पौ करिया। उडे उडावा सा कोसा, तिस पाछा बचरे श्रेया। तिन कमन खुलावा कमन चुगावा, तिन कमन खलावा कमन चुगावा। मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान। ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइया। तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमागम पारा। सब त्याव है सब त्याव है, तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कटकटांतर सर्व निरंतर जी, हरे को पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

आहे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलहो हरलाहा ग बसन सोहेला औद कटा दिन सुरैणारे मन गुरमिल काज सुवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावै हो रस कथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पाव हो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मुख

मंदर ऊसरा है रतनीता होहे जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदना लीपे आवा चाओ मात देख भूला विसरा तेरा चतना वनाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया वरना ही थाओ रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सोहा रंग करे पसाओ करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरा तेरा चतना वनाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखाओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राख पाओ

तब लगे हो तन देहे। बिन गुण कामना वई टह ढेरी तन खेहे। मेरे मन लैलाह कर जाहे, गुरमुख नाम सलाही है हूं मैं निबरी पाहे। रहाउ सुन सुन गंडन गंडी है, लिख पढ़ बुझह भार। त्रिसना हिन सगली हूं मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख स्यो प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख चीनै आप। तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नाल। त्रिभवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल। सतगुर

हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाईहन शब्द सलाहे राहाओ सच वखर धन रास लै पाईए गुर प्रगास।

निर्बाणी काहे गर्भस मूढ़े माया पैत सुतो सगल का लतर माता तेरे होहे नांत सखाया रहाउ बेखा बेकार दुष्ट के रखा करेन तजात मैं हुए त्याई जब तब संयम होहे जब राखे कमल बेगसा मदा सुरमाई बीस सप्ताहरो बासरो संग्रह है तीन खोड़ा नित काल सारा है दस अठार मैं परम्परोचीना कह नानक एक तारा है श्री राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आप नित देह पाणी होए किरसान ईमान जम माए लै पैस दोजक मूढ़े बजाणी मत जान सह गली पाया मालक मन रूप की शोभात विधि जन्म गवाया रहाओ ऐब तन चिकड़ो एहो मन मीड को कमल की सार नहीं मूल पाई पौर उस्ताद नित भाख्या बोले क्यों बूझा जान है बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी एहो मन रता माया खासम की नदर दिल है पसिंदे जिनी कर एक त्याया तीही कर रखे पंज कर साथी नाओ सैतान मत कट जाई नानक आखै राहे पै चलना माल धन कितकु संजया श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो आप खाक जिन बंद रहाई धन सिरजनहारो मरना मुला मरना भी करता रहो डरना रहाओ तातू मुला तातू काजी जाने नाम खुदाई जे बहु तेरा पढ़िया हो वह को रह न भरिया पाई सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम किया दारो है पी होसी जाए न जासी रत सच्चा सिरजन हारो पंज वक्त निवाज गुजार है पढ़ है कतेब पुराणा

हर रहाउ। मुख निंदा आखा दिन रात, पर कर जोही नीच सनात। काम क्रोध तन वसा चंडाल, तानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलूकी वेस, हौ ठगवाड़ा ठगी देस। खरा सियाणा बहुता पार, तानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, हौ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह बीचार, तानक रूप रहा करतार। श्री राग महला पहला कर चौथा, एका सुरत जेते है जी।

एहो सहसा मूले नाही भाओ लाए जन कोए। नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मिलावा होए। श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लो बाणे सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवाव है बूझै नाही अंदिन दुख बिहानी मनमुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पाणी मन रे सदा भजहो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसा ता हर विसर न जाई राहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हुमै दुष्टी पाई आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा तो सुखाली जो

0: हम मैं तज बेकार। एहन सहृदय रब रहै निरपहु नाम निरंकार। नानक आप मिलायन पूरा शब्द अपार। श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है। अंत न पाया जाए कथनी बदनी न पाई है विच हो जाए। सतगुर मिलया सद पै रचा आप वसै मन आए। भाई रे गुरमुख बूझै कोय बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ होए राव। जिनी चाख्या तिनी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए। अमृत साचा नाम है कहना कछु न जाए। पीवत हो परवान पया पूरा शब्द समाए। आपे देता पाईऐ होर करना किछु न जाए। देवन वाले कै हाथ दात है गुरु द्वारा पाए। जेहा की तोन तेहा होआ जेहे कर्म कमाए। जात सत संजम नाम है गिण नावै निर्मल न होए। पूरा भाग नाम मन वसा शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा हर गुण पावै सोए। श्री राग महला तीजा काया साधा उर्द तप करै विच हो हमै न जाए। अध्यात्म कर्म जे करे अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कब ही पाए। गुर का शब्द जीवित मरै मर हर नाम वसै मन आए।
1: सुन मन मेरे सतगुर सरना गुर प्रसादी बहुत फल चल शब्द गुर करना रहाओ। त्रैगुण सभा तत है दूजा पाओ विकार। पंडित पड़े बंधन मोह पादा नै मुझे दिखिया प्यार। सतगुर मिले तरकुटी छुट्टे चौथे पद मुक्त द्वार। गुरते मार्ग पाई है चुके मोह गुवार। शब्द मरे ता उदरे पाए मुख द्वार। गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करतार। एहो मनुआ सत अत सबल है छड़े न किते उपाय। दूजे पाए दुख लाहिंदा बहुती देस जाए। नानक नाम लगे से उभरे होमे शब्द गवाए। श्री राग महला तीजा कृपा करे गुर पाई है हर नाम उन्दे दृढ़ाए। बिन गुर किने न पाए वो बिरथा जन्म गवाए। मन मुख कर्म कमावणे दरगह मिले सुजाए। मन रे दूजा भाव चुकाए अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए। रहाओ सच बाणी सच शब्द है जहाँ सच धरे प्यार। हर का नाम मन बसे होमे क्रोध निवार। मन निर्मल नाम त्याई है ता पाए मुख द्वार। होमे बिच जग बिन सदा मर जमे आवे जाए। मन मुख शब्द न जाननी जासन पत गवाए। गुर सेवा नो पाई है सचे रहे समाए। शब्द मनिए गुर पाई है बिचों आप गवाए। आंदन भगत करे सदा साचे कील बलाए। नाम पदार्थ मन बसिया नानक सहज समाए। श्री राग महला तीजा जिनी परख सतगुर ना सेवे ओसे दुखी ए जुगचार। घर होंदा परख ना पछाणे अभिमान मुटे अहंकार। सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार। सच्चा शब्द न सेवे ओ सब काज सवारन हार। मन मेरे सदार देख दूर जन्म मरण दुख पर हरे शब्द रहा भरपूर। राओ सच सलान से सचे सच्चा नाम आधार। सच्ची कर कमावनी सच्चे नाल प्यार। सच्चा साओ बरतदा कोई न मिटन हार। मन मुख मेल न पाइन कूड़ मुटे कुड़ियार। होमे करता जग मुआ गुरबिन घोर अंधार। माया मोह बिसारिया सुखदाता दातार। सतगुर सेवे ता उभरे सच रखे उरतार। कृपा ते हर पाई है सच शब्द विचार। सतगुर से मन निर्मला होमे तज विकार। आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार। तंदा तावत रह गए लागा सच प्यार। सच रते मको जले ते सचे दरबार। सतगुर पुरख न मन्यो शब्द न लगो प्यार। स्नान दान जेता करे दूजे भाई खुआर।
2: हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार, नानक नाम संभाल तू गुर कै हेत प्यार अपार। श्री राग महला तीजा कैसो सेवी क्या जप करी, सतगुर पुछो जाए सतगुर का पाना मन लई बिचो आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम बसे मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सहाए।

मन की इच्छा पूरिया शब्द रहा भरपूर भय भय भगत करे दिन राती हर जियो देखे सदा हदूर सच्चे शब्द सदा मन राता भरम गया शरीरो दूर निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर जो जागे से उबरे सुते गए मुहाए सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाए सुंजे कर पौना ज्यो आया त्यों जाए मन मुख जन्म बिरता गया क्या मुँह देसी जाए सब किश आपे आप है होमे बिच कहन न जाए गुर के शब्द पछाणिए दुख होमे बिचो गवाए सतगुर सेवन अपना हो तनके लागो पाए नानक सच नानक दर सचे सचियार है हो तिन को बलिहारे जाओ श्री राग महला तीजा जे वेला भगत बिचारिये ता कित वेला वक्त भगत होए आंदे नामे रत्या सचे सची सोए इक तिल प्यारा बिसरे भगत कनेही होए मन तन शीतल साच स्यों सासना बिरथा कोए मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत न थिए जहाँ हर बसे मन आए रहाओ सहजे खेती राही है सच नाम बीज खाए खेती जमी अगली मनुआ रजा सहज सुभाए गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाए ए मन साचा सच रता सचे रिहा समाए आखण बेखण बोलना शब्द रिहा समाए बाणी बजी चौजुगी सचो सच सुनाए होमे मेरा रह गया सचे लिया मिलाए तिनको महल दूर है जो सच रेल विलाए नदरी नाम त्याई है बिन कर्मा पाया ना जाए पूरे भाग सत संगत लहे सतगुर भेटे जिस आए अंधे नामे रत्या दुख बिख्या बिचों जाए नानक शब्द मिला बड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायो न जिन गुर का शब्द विचार सत संगति सदा मिल रहे सचे के गुणसार दुबदा मैल चुकाई अन राख्या और तार सची बाणी सच सची बाणी सच सदा मिल रहे सचे के गुणसार दुबदा मैल चुकाई अन हर राख्या और तार सची बाणी सच मन सचे नाल प्यार मन मेरे होमे मिल भर नाल हर निर्मल सदा सोहना शब्द सवारण हार रहाओ सचे सद मन मोया प्रभापे ले मिलाए अंधे नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूं प्रभ जापदा बिन सतगुर भूजन पाए जिनको पूर्व लिखिया सतगुर भेटिया तिनाए बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए दिस बिन घड़ी न जीव दी दुखी रहन ब्याए परम भलाना अंदला फिर आवे जाए नदर करे प्रभ अपनी आपे ले मिलाए सब कुछ सुनदा वेखदा क्यों मुकर पिया जाए पापो पाप कमा मदे पापे पचे पचाए सो प्रभ नर नावई मन मुख बूझ न पाए जिस बखाले सही सोई बेखे नानक गुरमुख पाए श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग न टुटई होमे पीड़ न जाए गुर प्रसादी मन बसे नामे रहे समाए गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्दे भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान न होए रहाओ हर इको दाता बरतदा दूजा वरना कोए शब्द सलाही मन बसे सहजे ही सखोए सब नदरी अंदर देखदा जय भावे तै दे होमे सवा सवा गणत है गणते नौ सुख नाहे बिख की कारक मावनी बिखी माए समाए बिन नावे ठोर न पाए नी जंपर दुख सहाए जियो पिंड सब तिसदा तिसे दा आधार गुर प्रसादी बुझिया ता पाए मुख द्वार नानक नाम सलाहे तू अंत न पारा वार श्री राग

रंग पाई है जिस नू कृपा करे रजाए संसा यो संसार है सुत्या रहन बिहाए कपने पाने कड लईन आपे लैन मिलाए आपे ही आप मन बसिया माया मोह चुकाए आप वडाई दितियां गुरमुख दे बजाए सबना का दाता एको है भुलिया ले समझाए कापे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए गुरमति हर पाई है ज्योति ज्योत मिलाए आंदे नामे रत्या नानक नाम समाए श्री राग महला तीजा गुणवंती सच पाया तिसना तज विकार गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर देखो मन विचार मन मुख मेल न उतरे जिचर घट गुर शब्द न करे प्यार मन मेरे सतगुर के भाणे चल निजगर बसा बसे।

पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां।

हर हर दयाल, हर आपे बख्श ले हर भावै। हम अपराधे राखे गुर संगति, उपदेश दियो हर नाम छुड़ावै। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब बिस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर मेरा बंधु मेरा सखा सहाय। जो हमरे बिद होते मेरे सतगुरा, सा बिद तुम्हार जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मैं जियो लुप्त है मोह मीठा माया। कार मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया, हर प्रभ चेतना आवे क्यों छूटा मेरे हर राया।

बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ, किस रूप नहीं किस जात नहीं किस ढंग न मेरा, क्या मूह बोले क्या मूह लै बोले गुण मिहू नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुरु उबरे पुन सतगुर केरा, सब जीव पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी, अन खाना कपड़ पहन दिनिया रस अन पोगाणी, जिन दिए सो चितना आवे पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्त दा तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करें सब खेल तू स्वामी, जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी, गोड़ी बैरागण महला चौथा, जो जननी सुत जन पालती रखे नदर मजहर, अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार, त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम। हम बारक हर प्रभ के हैं सियाने, तन तन गुरु गुर सतगुरु पादा, जिन हर उपदेश देखिए सियाने रहो, जैसी गगन फिरंती उड़ती कपरे बागे वाली, ओ राखे चीत पिछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली, त्यों गुर सिख त्यों सतगुर गुर प्रीत हर हर की, गुरसिख रखे जी नाली, जैसे काती तीस बतीस विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती के कशात है सब वसगत है हर केरी, त्यों संत जना की नर निंदा करे हर राखे पैज जन केरी पाई, मत कोई जानो किसी के कशात है सब करे कराया, जरा मरा ताप सिरत साब सब हर के वस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया, ऐसा हर नाम मन चित नित त्याऊं, जन नानक जो अंति अवसर ले छाया, गोड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, मन के दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है, मेरा सतगुरु प्यारा कित बिद में लै हो, खेन खेन करी नमस्कार मेरा गुरु पूरा को मिले रहो, कर कृपा हर मेलिया मेरे सतगुरु पूरा, इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु धूरा, हर भगत लड़ावे हर भगत सुने ते सतगुरु मिली है, तोटा मूल ना आवी हर लाभ नित दृढ़ी है, ज्यों जिस को हृदय बिगासे पहु दूजा नाही, नानक तिस गुर मिले उदरे हर गुण गवाही, महला चौथा गोड़ी पूर्वी, हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुखर बोली, गुर मुख रंग पयात गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली, अपने हर प्रभ की हो गोली, जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली नहाओ, करो विवेक संत जन पाए कोज हृदय देख कंडोली, हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली, हर निकट वसै सब जग परम प्रपुख तोली, हर हर प्रगट कियो गुरपुरे सिर वेचियो गुर पै मोली, हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड परख वडोले, जन नानक कहन दिन हर गुण गावे मिल सतगुरु गुरु विच ओली, गोड़ी पूरी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते सत्संगत मिल राम रस पाया, हर राम नाम समाते राव हर हर नाम हर हर जन अवखद जग अवखद, हर हर नाम हर साते इनके पाप दुख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते जिन को लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख शरणाते, दुरमत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते, राम तुम आपे आप प्रभ ठाकर तुम जेवड़े अवरना दाते, जन नानक नाम लय ता जीवे हर जपिए हर कृपा ते, गौड़ी पूरी महला चौथा करो कृपा जग जीवन दाते, मेरा हर मन सिथी राते सतगुरु बचन दी वत निर्मल जप हर हर हर मन माचे, राम मेरा मन तन भेद लियो और साचे, जे काल कै मुख जगत सब ग्रसया गुर सतगुर कै बचन हम हर बाचे रहो, जिनको प्रीत ना यार सेती ते साकत मूड नर काचे, तिनको जन मरण अतपारी विच विष्टा मरमर पाचे, तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजै दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम की जय मत नृत्य करे कर नाचे, आपे शाह वड्डे प्रभ स्वामी हम वन जा रहे हैं ताचे, मेरा मन तन जीव रासा सब तेरे जन नानक के सा प्रभ साचे, गौड़ी पूरी महला चौथा।
तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो देखा ने जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुरु मेल मेरा प्राणे राम हम सतगुरु पार ब्रह्म कर्मा ने हम मूढ़ मुक्त अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कह बचन हर हम जाने रहो जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फेकाने हर का नाम अमृत रस चाख्या मिल सतगुरु मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुरु ने भेटिया ते साक्त मूढ़ देवाने जिनके कर्महीन तुर पाए देख दीप कमो पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर प्रपटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूरी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी को किते हर पै नसी है आपे हर आपे बख्श ले प्रभ साचा हर आप छुड़ाए छुट्टी है मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है सतगुरु की सरणाई भज पो मेरे मन गुर सतगुरु पीछे छुट्टी है रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता जित सेवया निज घर वसी है गुरमुख जाय लो करे अपना कस चंदन हर जस कसी है मेरे मन हर हर हर हर जस उत्तम लै लाहा हर मन हसी है हर हर आप दया कर देवै ते अमृत हर रस चखी है मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुठी है ते साकत चोर जिना नाम सारिया मन तिन कै निकना पिटी है मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेवै लेख छुट्टी है जन नानक हर पर पूरे किए खिन मासा तोल न कटी है गोड़ी पूरी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जीवन सब तेरे दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन प्रहर केरी गुर कृपाल कृपा किंचित गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम्हार जानो मेरे आनंदन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आए प्रभ मेरी आनंदन आनंद भयावड पागी सब आस पुजे जनकेरी जगनाथ जगसी जगदीशर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गोड़ी पूरी महला चौथा ए मनुआ खिन ना टिके बोरंगे दे दे दिल दिस चल चल हांडे गुर पूरा पाया वड भागे हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बो सांडे पार उपकार पुन बो किया पौ दुत्र तार परांडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन कूड़े गांडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है त्यों मन मुख गर्भ गलांडे हम जान्या कछु न जानो आगे ज्यो हर राखे त्यों ठांडे हम भूल चूक गुर कृपा तहारो जन नानक उतरे कांडे गौड़ी पूरी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिख तिलके गुर पाया मन हर लिवमंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साक्तारा साधना जानिया तन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुबे दुख पावे जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुख पाया परमेश्वर बो सोभ खंड ब्रह्मंडा है